काट काट मोही तुम्हें मोहे ना। सतगुरु जी कहंदे ने मेरे सच्चे गुरु ने इन्हां अखियां दे नाल इन्हां लोइनां दे नाल ये वाहिगुरु आप जी दे दर्शन करा दिते ने ते हुण आप जी मैनूं इस लोक विच परलोक विच हर जर्रे दे विच नजर आउण लग पए हो। गुरु हे दिखायो लोए ना इत है उत है घट घट घट घट तू ही मोहे ना। और इस गल की समझ आ गई है कारण करना धारण करना एक है सोहे ना। हे सोहे प्रभु तुसी आप ही सारे जगत के मूल करन वाले हो ते सारी सृष्टि नूं सहारा देण वाले भी आप ही। बस इको बेनती है संतन प्रसन्न बलहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहना नाम जपन वाले भी चंशो चाहिदी है महापुरशां दे दर्शन चाहिदे ने। इसे गल विच ही मैनू चैन है मैं सुख की नींद सौ सकता हाँ संतन प्रसन्न बलहारी दर्शन।

अदे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गलबात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उहनां नूं इह समा नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तो वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। इह हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी दे ने, कोई मेरियां अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, पुछी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, यह मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी हुई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

तिरंत न परवरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावे है।

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हे पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते भई सभिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजनहारे दास जान मोह लेहो उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दरछा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो। आप हाथ दै मोहि बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सेख्य सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख्य हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजु करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जब उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ता को कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो हितेती। तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जी अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई सुनै मूढ़ चितुलाए चतुरतावई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै हो जो याकी एक बार चौपाई कौ कहै चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कोऊ आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिम

0: सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास।
1: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पढ़ियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर।

सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अखन कटे सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो।

0: गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
1: सम्राट गुरु सिरहा

0: जिया नामे समस्ती स्वरूपे
1: कलंकी परमाते समस्ती प्रभुते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज देशवन परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज देशवन परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमीय भोगीय भुक्ते
1: नमो जोग जगेश्वरं परम युक्ते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देव सुतर में
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो शाशान नमो पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमो तंक्षनाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्टि से नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
1: अदौर दंगंग हर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोच्छपालं
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अच्छेदी अपेदी अनामंग कामं
1: समस्तोपराधि समस्तस्तताम
0: हे राजो।

0: प्रसादाद रूपनाथ मूर्त जौनपुर खपार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल
1: प्रसाद
0: नाम धाम न जात जाकर रूप रंग न रेख।

0: जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चकर बकर फिर चतर चक मानिए प्रतीन
0: लोग चौदह के बिके जग जाप ही जे जाप
1: देवनाद मूरत था प्यो छवे जे था
0: परम रूप पुनीत मूरत पुरन पुरख पार
1: सर विचो रचो छन कण पंजन हार
0: काल हीन कला संजुगत का।

0: सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कली में के परम
0: कला में के साहिब कला में
1: के हुसनल बजू है तमाम मुदर जू
0: हमें सुलसला में सली खुदमदा में
1: नीमुल सिकर से गरीब उल परस
0: बलिंग दुल मकाने जमीन उल जमाने
1: नीजुल तमाम मेरे जुअल निदान
0: हरी फुला जी मेरे जाए यकीन
1: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
0: अजी जो निवाज है।

0: जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे
1: को तुरंग पुरंग से कुदद पौन के गौन को जात निवारे
0: कारी पुजान के पूपली विद न्यावत शीस न जात बिचारे
1: ते पहे तो कहा पे पूपते अंत को नांगे ही पाए पदारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: भूत भविख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री पा श्री भगवान पजे बने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दे आदम दाम सुसंजम ने मनेक बिसेख है
1: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान के पेख है
0: कौन हा जति जत तार सब ऐसो बिचार हजार उक देख है
1: श्री भगवान पजे बिन भूपते एक रति बिन एक ना लेख है
0: शुद्ध सिपाह दुरंत दुबा सुसाज सुनाह दुर्जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: तोर रीन मरोर मुवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: कृपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरियार विचार है सार की तार पछैया
1: तोर देश मलेंद मुवासन माते गजान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया
1: श्री सबको सिर नायक जाचक ने एक सो एक दवैया
0: दानव देव फनिंद निसाचर भूत पविख पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब था थपेंगे
0: पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
1: सासमो प्रसन्न फिरे जल सतर सवे अवलोक जपेंगे
0: मानव इंद्र गजिंदर नरा तप जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजाय दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: ब्रह्म हे सर विसन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्री

0: ठाको स्मरत प्यो संकरी कैटा
1: सगरी सृष्टि दिखाए चंबवा जुगा स्वरूप से अंब
0: अब्र छामे रीतम करो सिख उबार सिख संगरो
1: दुष्टे उड़वत उड़पाता सगल मलेश करो रणकाता
0: तव शरणी परे तिंके दुष दुख थे मरे

0: निर्मल भारत निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करनी कमानी
1: मूर्खे सोए पहुंचे नाही मनसा सत समानी
0: जन्म रतन जिनी कटिया बले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल।

0: रस न तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए
1: प्यास न जाए होरत कितै जे चर हर रस पल्ले न पाए
0: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोड़ न तृष्णा लागे आए
1: हर रस करमे पाए सतगुरु मिले जिस आए
0: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जाहर वसे मन आए
1: हे शरीर मेरे हर तुमे जोत रखी ता तू जग में आया
0: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया
0: गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया
1: कहे नानक सृष्टि का मूल रचा जोत राखी ता तू जग में आया
0: मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया
1: हर गावो मंगल नि सके शोक दुख न व्यापे
0: चरण लागे दिन सबागे अपना पिर जापे
2: अनहत पानी गुर सब जाने हर नाम हर स्पोगो
0: कहे नानक प्रभ आप मिलिया कर्ण कारण जोगो
1: हे श्री राम मेरे इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया
0: क्या कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया
1: जिन हर तेरा रचन रचा सो हर मन न वसाया
0: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया
1: कहे नानक श्री प्रमाण हुआ सतगुरु से चित लाया
0: हे नेत्रो मेरे हर तुम में जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया
0: ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया
1: गुर प्रसादी पूजिया जावे कारिक है हर बिन अवर न कोई
0: है नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिए द्रिब दृष्ट होए
1: ए सुनो मेरे साचे सुनने नु पटाए
0: साचे सुनने नु पटाए शरीर लाए सुनो सत बाणी
1: सुने मन तन हरिया हुआ रस न रस माणी
0: सच अलख वडाणी ताकि गत कही ना जाए
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचे सुनने नु पटाए
0: हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया
1: बजाया वाजा पौनो द्वारे प्रगट किए
2: दसवा
1: गुप्त रखाया
0: गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवा द्वार दिखाया
1: अनेक रूप नाना में तिजा अंत न जाई पाया
0: कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया
1: साचा सोयला साचे कर गावो
0: गावो ता सोयला कर सच्चे जिथे सदा सच त्यावे।

0: दल डारे
1: खंड अखंड प्रचंड प्रहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद्मा पत भेद खतेब अपेद उचारे
1: रोज ही राज बिलोखत राख।

0: जे जात न पाता सत्र मित्र जे तात न माता
1: सब ते दूर संबंधे नेरा जल तल महियल जाए बसेरा
0: अनद रूप अनाहद बानी चरण सरन जे बस्त पवानी।

0: न डरो हरसों जब जाय लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो
1: अर सिखों अपने ही मन को लाल चहो गुण तो उचरो
0: जब आपकी औद निदान बने अत हिरन में तब जूझ मरो
1: जब आपकी औद निदान बने अत हिरन में तब जूझ मरो तन जियो तह को जग में मुखते हर चित में जुद विचारे
2: दे अनित न नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे
1: धीरज ताम बनाए है तन बुद्ध।

सुख कनेरे कोई न जान, तुमरा अंत उचेते। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हो ऐसो। तुमरी गत मित सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध्या वै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

चक्र चेहन अरबरन जात अरपात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहीं जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथय कवनम।

सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसामी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो जिस